ए बिंकुल होतुमा सिराज ती एनागे पप्पागे गातशे सिराजगे कुशुगे हुकुमफहु हगीगे नेंगे ती पप्पेया एनेगे तेमेदु गोती बडु दुर्मिनें उफेदिफे ए बप्पागे अमिल रशिक कोन्ना पागी चागहुन्ना मुळी आहारु माळा बडु चंपापूल कहुगे दशुं कुडा बिंकुलक सिराजे दुने नमवेस आहार थोगे हिमेंकमा हिंगम नुचुंगे सबबुं बप्पा ए बिंकुलु दें तेकुलु हदा देमी हुंगे मेतुगा दिला रिहुमें हुरी पोड़ जुआ पेंगी की ए।

0: हैके मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
1: नुवदी हैके मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम अबदुस एम मेगाहर्ट्ज

ए दोहे के हवीर मूसा एस सिराजा बद्दल कों हकी के हाम कुतिने मूसा के आदिन गोतुगा सिराजा फेनुनु ए हिंदुनु फातीनी मूसा के लोपी के हुशेल मं वडुमै तिरिका मायकु इंकार को केने फाती के हिं मूसा नुं एहिं मिस्राबकं आदे सिराजा सीधा विफावाकं मूसा विष्णुमुं एना एवाहक सिराजा के आदिनीये मेखं एंगुमुं सिराजुगे हितुगे कोळिकणु हिमेंवे एना अवसेगती फाती होतुमशे फाती इनी माले के एम्मे दोसी हिमें बिनाकमपा हुकुरु मिस्कितुगे गोति तिरेगए इरो सेमुंदिया रीति वगुतेक सिराज एतनगोस फाती के कुरिमच्चं हुट्टुने आदि एतम महेपंदें हिफेटी हिमेंकमा हितुगे अडीग फोरुवाफवा हुरिहा बस्तकें फुरतम फहरत्तू कोल्लिए सिराज एनागे हकीकी लोभि हाम कुरिए लिफ्टुन दिमावि फुरतम दुहुं फेशिगें एना फाती देके इंतिया लोभि वाकमा ए लोभि नुवांकुरि कोम्मे मसिक्कते बेकार वीकं फाती यक्या दिने सिराज के इख्लास तेरे लोपी के युतिराफुं फाती के मुले दुनिये एफुं मिफुश अच्छे हुने एना दुवमुंतिया मंजिलकी मुलें एहें दिमाले कम विष्णु नुवागुतु हिता वेरिवी पारुकत जजुबातु तका के नुकुरेविकें फाती हेने तिगें वेट्टुने हॉस्पिटल अकें देवुने डॉक्टर सिराजतिनी मुळि तीरुळुं सुन्नाफति कोल्ले हित्तति हबरेके फातीगे सिकुणीग नुरक्खाते ट्यूमरें उफेदि बलीगे फहु मरहलाक हुरुमुं एफएस फरवायन निक्कमे फाती हॉस्पिटलुं दूकोल्लुमुं एम्बुरि लाइब्रेरिया कोस फोयतोगे तेरें सिराज फोरुवाफुरि कुदिकुदि नोट्तं होतेगें किए रीति दिवेहि अकुरुं लेफावा ए नोट्तकुं सिराज फाती देकेवा लोबि साफु विए एफुं इहुसासेक फाती सिराजुगे कातत दिये। आदि हॉस्पिटल गोईं इरु अतुं हताले ओरिकामी करदास कोलें सिराजुगे अतत दिने। एगोती साधा दिवेही पौन लेफावा कैविनी गे हुशेलु में। आहना कैविनी कोफानंत अहमद सिराज। सिराज वरक गिनेरु वंदें ए करदास कोला बलाट्टा गें हुरुमफो फाती के मूना बलालाफा मडुमडुं आए के पुन्ये।

ए बिंकुल हो तुमा सिराज ती एना के पप्पा के गातशे सिराज के कुशु के हुकुम फहु हागी के नेंगे ती पप्पेया एने के देमेत गोती बडो दुर्मिनें उफेदिफे ए बप्पा के अमिल रशिक उन्न पाकी चागा उन्न मुली आहारो माळा बडो चंपा पूल कहु के दशुं कुडा बिंकुल का सिराज दुने नमवेस आहार तो के हिमें कमा हिंगम नुचुं के सबबुं बप्पा ए बिंकुल ते देखुल हता देमी हुंगे मेतु का दिला रिहुमें हुरी पोड़ जुआ पेंगी की ए।